0: ईरान ऐं अमेरिका जे मुस्तक़िल जंग बंदीअ लाइ पाकिस्तान जूं कोशिशूं जारी आहिनि। फिलदास मुनीर अॼु ईरान जे दौरे ते पहुचंदो। ईरानी अख़्तियारनि सां मुलाक़ात कंदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में अमन इस्तहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसल आहे। गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राजी विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान खिते जे सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बरतानिया जे सरकारी दौरे ते लंडन पहुची वियो। एयरपोर्ट ते बरतानिया में मुक़रर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तैयब उस्मान इसहाक़ डार जी आजियां कई। परॾेही खाते मूजिबि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 24 खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परॾेही तर्जुमान मूजिबि बरतानवी परॾेही वज़ीर अहद मेर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातनि में सोमयालीअ में यरगमाल पाकिस्तानी जो मामिलो उथारियो वेंदो।
0: कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफ़िक पुलिस मूजिबि कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं, 7 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफ़िक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंग 184 आहे।
1: खैरपुर में फफोटा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में 40 सालनि खां हलंदड़ खूनी तकरार जो निबेरो। धुरियुनि ते मजमूई तौर 2,75,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर रहीम वक़्फ़ पहुतो। धुर जे 3 खून 15 ॼणनि खे ज़ख़्मी करण जो ॾोह साबित थियण ते 2,25,00,000 ॾंड मुक़रर। अतीकुल रहमान पहुतो। धुर मथां 1 खून ऐं ॿियनि नुक़साननि जो ॾोह साबित थियण ते 50,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। सर्किट हाउस में थियल निबेरो ज़ुल्म कारखान कुमारियो एजाज़ ख़ान ॿुधियो। भोला बख़्श महर जी सरपंची हेठि थियो धुरियूं खीर खंड।
0: ऐं मोहन जो दड़ो वेझो मोटरसाइकिल स्लिप थियण सबबि ज़ाल मुड़ुस दादू केनाल में किरी पिया। मर्द खे बचायो वियो, औरत लुड़ी वई। ॿियनि इलाइक़े वासनि मर्द खे बि कढी वरितो। संदसि ज़ाल साजिदा बुबे जी ॻोल्हा जारी आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जीअं मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
9: प्रमोशन लेटर।
10: कंग्रेचुलेशंस।
9: थैंक यू।
10: वाओ।
9: पूछने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ। आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग।

0: तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03008569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
3: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आइन। हर जुमे, छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज, नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 03011 96 851।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: उम्मीद के दिए जलते हैं,
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03001380 8347।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे हैं इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के आम दौरे से अज तहरान पहुंचंद। ईरानी क्यादत से मुलाकात कंद। अमेरिका ईरान विच में मुस्तकिल जंगबंदी समेत खिते के सूरताल से गाल कई वेंदी। ईरानी परदेही वजारत तस्दीक कंदे है तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अज ईरान के दौरे से पहुंचंद। ईरानी क्यादत से मुलाकातू कंद। उमानी परदेही वजीर भी अज तहरान पहुंचंद। उमानी परदेही वजीर जो दौरो आबना हरम से हलंद गाल तसलसल है।
1: मातलीवे जो तेज रफ्तार वेन ट्रैक रॉड टुटण सबब कल्टी एक मुसाफिर फौज 15 का वधिक जख्मी। हैदराबाद का मातलीवेंदर वेन टंडो मोहम्मद खान रोड से वीरानी मोरी स्टॉप पर कल्टी थी वही। हादसे के नतीजे में टंडो मोहम्मद खान वासी फैसल मेमन फौत थी वो है। फौती जो मड़ ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
0: घोड़ाबारी में किरियाने के दुकान में चोरी खिलाफ शहर में शटर बंद हड़ताल। चोरस सूरत चक्कर के दुकान के खाट रणी लखे रुपये जो सामान है रोक रकम खड़ी वह। व्यापारियों पारा चोरी वाके खिलाफ एहतजाज। शहर में शटर बंद हड़ताल। व्यापारियों को चवण है तो चोरी ए पुर्जे वाक्य सबब शहरी पान के गैर महफूज समझी रहा है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
4: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 0300320437202 0242460100।
6: अस्सलाम वालेकुम। अदा
7: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम, यू आर सुनिए टटरी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। आप आई होप सी जी जहाँ जहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल टिप टप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं, पूरे पूरे 1 बजे तक।

प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान के म्यारी वक्त है, तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे और अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बस में खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

ईश्वर के ज्ञान में हमेशा के लिए हम बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि हम मुझसे करना चाहते हैं वो सब करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और उस गाने के साथ चलेंगे आगे। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह के कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आई टाइप कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 8881 पे. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जो कि है www.facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जो भी होती है जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग मुझे और हम प्ले करेंगे एक और गाना और उस गाने के साथ हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई,
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
3: बुक स्टूडियो सीजन 14।

0: हम रिसीव करने जा रहे हैं शो की एक और कॉल और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से
1: मैम? नहीं पहचाना.
0: ओ ओ सागर भाई. सागर भाई कैसे ठीक ठाक?
1: खैरियत खैरियत. करम करम मालिक.
0: अच्छा मुझे बताएं गाना सुनाना है कहाँ से सुनाएंगे?
1: मैं गाना आज मारवाड़ी जबान में सुनाऊं.
0: मारवाड़ी जबान में? ओके सुना दें. अच्छा सा
1: घड़ी रे घड़ी तेरे नजर हरी तारी नजर हर तुम्हे कभी घड़ी रे घड़ी तेरे नजर हरी चारों तुझे जानू है वो जादूसिया चारों तुझे जानू है वो जादूसिया तेरे पिंजरे में मनते चाहूंगी लाख लाख लील कुले हर एक पल घड़ी घड़ी रे घड़ी किसे नजर
0: हरी. वेरी नाइस. अच्छा इस गाने का टाइटल और सिंगर?
1: सिंगर मैं सच बताऊं?
0: हाँ
1: ये सिंगर ये मैंने ही गाया है और मैं ही रिकॉर्ड करूंगा. ये मैंने बनवाया है.
0: अरे वाह क्या बात है क्या बात है. फिर तो हम इंतजार करेंगे कि ये जल्दी से यूट्यूब के ऊपर आ जाए.
1: ये आ जाएगा इंशाल्लाह मैम 10-15 दिन में आ जाएगा.
0: चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. थैंक यू सो मच. और कुछ कहेंगे भाई?
1: और गाना कोई अच्छा सा सुना दे मैम.
0: अच्छा सा गाना अभी सुनाते हैं जी. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.
2: तेरे ते में मरना तेरे वादी करती वादी.
0: अच्छा अच्छे से गाने की अगर बात हो रही है तो अच्छा सा गाना हम प्ले करते हैं फ्रॉम द एल्बम सुबह आईना बाय आतिफ असलम. इनकी एल्बम का गाना इश्क नहीं हूँ इश्क में. तो ये वाला हम प्ले करते हैं और इसको सुनते हैं और इसी के साथ हम आगे चलते हैं. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेते हैं और चेक करते हैं कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई? गाना वाना सुनाएंगे?
1: शुक्र है बाजी, बिल्कुल वफा अब्दुल वहीद जतोई बाजी के.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया.
1: बिल्कुल हाँ, गाना सुनाएंगे बाजी.
0: ओके सुना दे.
1: हाँ गाना है.
0: ओके कॉल ड्रॉप हो गई भाई की, ऐसे नहीं होना चाहिए था. वेरी बैड. तो क्या किया जाए, हम प्ले करते हैं गाना आसिम अज़र की आवाज में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है और इस लिमिटेड से टाइम में हमें करना है या गाना भी और साथ में फिर न्यूज़ ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों.

अच्छा आज का टंग ट्विस्टर भी शेयर करती जाऊंगी। आज का टंग ट्विस्टर ये है कि काशिप ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। ठीक है, काशिप ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। ठीक है, इसका जल्दी जल्दी बोलेंगे। काशिप ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया।

0: कंदो ईरानी क्यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमरीका ऐं ईरान विच में मुस्तक़बिल जंगबंदीअ समेत खिते जे आम सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कंदो। ईरानी परॾेही वज़ारत तसदीक कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीरा जी ईरान जे दौरे ते पहुचंदो। ईरानी क्यादत सां मुलाकातूं कंदो। मानी परॾेही वज़ीर बि सुभाणे तहरान पहुचंदो। मानी परॾेही वज़ीर जो दौरो आबनाए हरम ते हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो तसलसल आहे।
1: अमेरिका जे ईरान ख़िलाफ़ डी डे जी शुरूआति थी वई आहे। अमेरिकी नायब सदर जी चयो आहे त ईरान वटि आलमी बहरी रस्तनि जी मुकमिल तौर बंदिश जी सलाहियत मौजूदु नाहे। मुआशी नाकाबंदी तहरान खे तबाह करे छॾींदी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त असां आख़िरी मरहले में दाख़िल थी रहिया आहियूं। दुश्मन ख़िलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई शुरू करे छॾी आहे। सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफ़न करे छॾियो आहे।

0: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच के वारसन रद्द कर छो। अदालती कमीशन जोड़ने वाले हुकूमती फैसले खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। केस की जांच लाए जेआईटी जोड़ने जो मुतालबो। वकील जबरान नासिर है जांच कमेटी की सिफारिश से अदालती कमीशन ठाया वो है। हुकूमती फैसले बाबत वारसन के आगाह ना कर मीडिया जरिए खबर पई है तो असाजी 24 साल सवाल में कें एक जो भी जवाब ना मिलो। मीर रजा के आखिरी फोटेजिस भी निठा वन।
1: मातली वेझो तेज रफ्तार वेन टायरा टुटण सबब कल्टी थी पई। एक मुसाफिर फोत 15 का वधिक जख्मी। हैदराबाद का मातली वेंदड़ वेन टंडर मोहम्मद खान रोड ते मीराणी मोरी स्टॉप वट कल्टी थी पई। हादसे के नतीजे में टंडर मोहम्मद खान वासी फैसल मेमन फोत थी वियो। फोतिया जो मड़ो ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
0: ऐं घोड़ाबारी में किरियाने की दुकान मां चोरी खिलाफ शहर में शटरबंद हड़ताल। चोर सूरत सिंह के दुकान के खाठी लखे रुपये सामान ए रोक रकम खड़ी वया। व्यापारियों पारा चोरी वाले वाक़े खिलाफ एहतजाज। शहर में शटरबंद हड़ताल। व्यापारियों का चवण है तो चोरी ए फुर के वाक़े सबब शहरी पान के गैर महफूज समझी रहा है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नजद गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहरापुर। असां वट जगह जो जारियूं, जगह जा पावा ऐं पाइप, डेढ ब चार छह नव ऐं बारह इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

Welcome to Welcome Back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। आकर मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू। कॉल कर रहे हैं आप लोग 03000113488 के ऊपर। इसके ऊपर कॉल करने के बाद हमारा सेगमेंट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बोलो तो माने।

0: इसका टंग ट्विस्टर है कि काशिफ ने कच्ची ककड़ी को फुटर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया, ठीक है, ये कहेंगे, ये कह के दिखाएंगे। और जब आप ये कहेंगे कि तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो बन कर जाएगा। और कॉलर चेक करते हैं जी, नेक्स्ट। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार, आज तो पहली कॉल लग गई है। बहुत देर से ट्राई कर रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ कि टंग ट्विस्टर सुना बोलोगी?
1: जी सुना, आप एक बार रिपीट करें।
0: एक बार रिपीट करूं? ओके। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया।
1: काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर काली कटोरी में कुरकुरा कर दिया। काशिफ ने कच्ची ककड़ी को कुतर कर
0: आगे शॉप। वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ और कुछ कहना है? अच्छा अच्छा
1: हमेशा
0: मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता।
1: मेरी नजर में ना आप सबसे अच्छी
0: है। अच्छा मैं सबसे अच्छी हूँ, वाकई यही बोला है?
1: बिल्कुल वाकई में यही बोल रही।
0: अच्छा मैं समझी कि मुझे गलत सुनाई दिया।
1: चलो जबरदस्त।
0: आए हाय, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। ये प्ले करना है क्या?
1: नहीं बस मैं आपको सुना रही थी, मतलब आपके इजहार के लिए।
0: चले जबरदस्त, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू सरदार। तो तुम बहुत सारा ख्याल रखो।
1: अल्लाह
0: हाफिज। ये थी सरदार। हमारा गाना चुप हो गया है। हमारा गाना चुप हो गया है और ये पता नहीं क्यों चुप हो गया है। हम इसको चुप होने नहीं देंगे एंड हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को। आज इत्तेफाक से आतिफ असलम के ये अच्छे अच्छे गाने मेरे सामने आ रहे हैं और देखें एक और अच्छा सा गाना। 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं।

0: एक और नेक्स्ट कॉलर चेक करेंगे जी कौन और कहां से. हेलो
1: अस्सलामुअलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल
1: भाजी. हाल चाल सही है. काल हमारे कट देता है भाजी, लेकर हमारे पास दुश्मन है तुम्हारी.
0: नहीं कट देता नहीं है, कट जाती है. ऐसी बात नहीं
1: सच
0: है.
1: सच पूछो तो आज ट्यू चकराने माँ आदम तो लदवा बैंक
0: नहीं. अगर अगर अगर अगर आपकी कॉल काटनी होती, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता सिस्टम तो हम कॉल उठा ही ना स्पेसिफिक लोगों की, है ना.
1: अफसोस है हमारे को. हम पुराना
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं है. बिल्कुल ऐसी बात
1: कोई गाल नहीं है.
0: बिल्कुल ऐसी बात नहीं आता. जिसकी कॉल लगती है लग जाती है, जिसकी नहीं लगती नहीं लगती. अच्छा मुझे बताएं कि टंग ट्विस्टर सुना है बोलेंगे.
1: बस बाजी हाँ असा ये बुधायो से तो इन्हें करे कॉल कई दे माँ अज डू चक्कर कॉल लगी न थी लगी थी तो बिल्कुल कटे थी चलो हाथ था.
0: ओके और कुछ कहना चाहेंगे इसके इसके अलावा और कुछ कहेंगे. चलिए जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. और मैं बिल्कुल ऐसे कॉलर्स का बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती थे जो सिचुएशन को ना समझते हो, जो ये समझते हो अगर उनकी कॉल कट जाती है अगर नहीं लगती तो वो इसका जिम्मेदार आरजी को समझते हैं. तो अफसोस के साथ मैं भी कुछ नहीं कर सकती. सॉरी, आई एम सो सॉरी. तो इसका मेरे पास कोई हल भी नहीं है. अगर आप लोगों की कॉल नहीं लग रही है तो मैं जबरदस्ती आके तो नहीं लगवा सकती ना. तो यही चीज है. और जिसकी लग जाती है लग जाती है, और जिसकी नहीं लगती उसकी नेक्स्ट टाइम लग जाती है, जिसकी कट जाती है उसकी दोबारा भी लग जाती है, जैसे आपकी लग गई. तो अगर हम कॉल उठाना ही ना चाहें तो हम आप लोगों की कॉल्स ले ही क्यों, तो ये सोचने वाली बात है. सो थैंक यू सो मच आपका. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब थोड़ी सी ना रूल्स जो है ना कॉल्स के लिए सख्त करूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर जो के कहते हैं कि कॉल नहीं लग रही, कॉल मिलती नहीं है, कॉल कट जाती है. तो भाई डेली कॉल नहीं करनी, ठीक है. डेली कॉल करेंगे, कॉल में खुद से ड्रॉप करूंगी बस, ठीक है. आप खुश, डेली कॉल नहीं करेंगे. 3 दिन छोड़ के फिर कॉल करेंगे, मैक्सिमम 3 दिन. आपसे ये रूल होगा. और अगर मैंने देखा और मैंने सुना कि आपने अगले दिन कॉल की है तो कॉल मेरी तरफ से ड्रॉप की जाएगी, ठीक है जी. तो ये कुछ रूल्स होंगे उन तमाम लिसनर्स के लिए जो कि कभी कभार कॉल करते हैं और उनकी कॉल नहीं लग पाती है. तो उनकी भी हम कॉल जो है ना लगवाएंगे. और मैं कोशिश करूंगी जो मेरे सारे लिसनर हैं वो कभी कभार कॉल करते हैं तो उनकी कॉल लगे और कॉल लगने के बाद उनसे मेरी बात हो. तो टंग ट्विस्टर के लिए हमारा सेगमेंट जो कि इस वक्त चल रहा है, नेक्स्ट कॉल है. हेलो मास्टर मंजूर का सॉन्ग. अच्छा इस सेगमेंट में वही लोग कॉल करेंगे, टंग ट्विस्टर बोलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट कॉलर एक और ट्राई करेंगे. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूँ.
0: मोहम्मद हनीफ कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: थरी मीरवास से.
0: तो कॉल कर रहे हैं?
2: हेलो
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: नहीं नहीं दो तीन दिन कॉल की थी.
0: अच्छा प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुना है, बोलेंगे?
2: बिल्कुल मेरा आवाज नहीं समझ आ रहा है.
0: सॉरी
2: आवाज बिल्कुल मेरा सही नहीं आ रहा.
0: आवाज मेरी सही नहीं आ रही, अब ठीक आ रही है? हेलो. ओके जी आपकी आवाज भी गायब हो गई है. तो ये कुछ सिग्नल्स इश्यू होते हैं जिसकी वजह से या तो आवाज चली जाती है या कॉल ड्रॉप हो जाती है, ठीक है. तो ये चीज है.

0: It's
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिलियत तहसीन नतीजे, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 850
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मोहम्मद उमर गोरी 03151575724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अच्छा कमेंट्स भी तो पढ़ने हैं यार, कमेंट्स को पढ़ते हैं. कमेंट्स ओके. किधर गए कमेंट्स? इस माँ की शो का कमेंट आया, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे गीत याद रखना, जो कभी तेरी महफिल में गुनगुनाऊं वो सुर याद रखना, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, लोग बदगुमान करेंगे तुझे, बस तुम मेरा प्यार मेरी शरारतें याद रखना. आहा सलाम सर, स्मार्ट आया है, वेलकम करो. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो. सरदर्द हम एवं ही आपको याद करते हैं. एवं क्यों? स्मार्ट किशोर कहते हैं, अरे भाई दिन है, बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है. गाने की बात हो रही है. अच्छा माँ किशोर कहते हैं बाई टीसी.
1: खबर हो शब्द लेना सहर हो,
0: बाई करने से पहले अपने कमेंट्स तो सुनते जाते.
1: सफर हो और तुम साथ,
0: फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेंट्स नहीं पढ़ती आप.
1: रात जुगनू से
0: देख ले, पढ़ती हूँ मैं.

मजे से गाना गा रही हूँ मैं आज. अच्छा हाँ, मैसेजेस की तरफ चलते हैं. हेलो आरजी सलाम, आदाब एंड ओके फाइन. काफी दिनों बाद आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सो वेरी एंजॉय किया है. नाइस एंजॉय, शुक्रिया आरजी, बाय एंड टेक केयर. जयपाल कराची से और कहते हैं सॉरी आरजी, लास्ट बात भूल गया था. तो बात यह है कि आप म्यूजिक मस्त प्ले करती हो, नाइस सॉन्ग कलेक्शन, सुपर ओके. अब ऑफ

0: कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: आज की अच्छी बात यह है कि सबका एक दूसरा ख्याल करना चाहिए, अदब और अखलाक से रहना चाहिए।
0: वेरी नाइस।
1: मैं एक शायर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप
0: सुना सुना दे।
1: मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, और जिससे होती है वो हमारे नसीब में नहीं होता है।
0: अरे वाह, क्या बात है जी, बहुत बहुत कमाल।
1: और तुम्हें वजी मेरे
0: जी सब कुछ ठीक ठाक, कुछ कुछ और कहेंगे अच्छा सा?
1: जो सुनना चाहते हैं, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शो सुनते रहे, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैं भी बहुत दिल से सुनता हूँ आपका शो, मुझे भी बहुत पसंद है। तकरीबन मुझे भी बहुत टाइम हो गया है, मैं आपका शो सुनता आ रहा हूँ, मिस नहीं करता।
0: अरे वाह, क्या बात है, बस इसी तरह प्यार मोहब्बत से सुनते रहे।
1: आपका शो मैं मिस भी नहीं करता, और अगर आप नहीं आती हैं तो फिर आपके शो को आपको मिस करता हूँ।
0: अरे क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़ जी। और ये थे कॉलर, लास्ट एंड लकी कॉलर। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा गाना भी खत्म हो गया है। एंड गाना हम नेक्स्ट प्ले करेंगे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लास्ट में हम इसी सॉन्ग के साथ जो है ना, अरे रैप अप करेंगे, ठीक है? अरे मैंने इसलिए किया कि मैंने एक गाना सर्च करके रखा था, वो मैंने खुद ही एकदम से ना क्लिक करके कट कर दिया। खैर कोई बात नहीं। और फाइनली जाने का वक्त करीब है।

फाइनली इंशाल्लाह मेरी आपसे चर्चा होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आर्टिस्ट. तो मत भूलिएगा जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ईरानी क्यादत सां मुलाकातूं कंदो। अमरीका ईरान विच में मुस्तकिल जंगबंदीअ समेत खिते जे सूरताल ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ारत तसदीक कंदे चयो आहे त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अॼु ईरान जे दौरे ते पहुचंदो। ईरानी क्यादत सां मुलाकातूं कंदो। मानी परॾेही वज़ीर बि सुभाणे तहरान पहुचंदो। मानी परॾेही वज़ीर जो दौरो आबनै अरुम ते हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो तसलसुल आहे।
1: अमेरिका जे ईरान ख़िलाफ़ बी डे जी शुरूआत थी वई। अमेरिकी नायब सदर जी डेविनस चयो आहे त ईरान वटि आलमी बहरी रस्ते

0: मुसाफिर फोत 15 का वधिक जख्मी हैदराबाद का मातली विंदड़ वेन टंडो मोहम्मद खान रोड ते मीराणी मोरी स्टॉप वट कल्टी थी पई हादसे जे अस्पताल मुंतकिल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिए बिना दंड तमाम खूबसूरत मासूम वही सोने समात उनको मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआ के समंदर चाहतों की बारिश लाजवाब खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तौर दम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते के नाम मस्ती। प्रोग्राम में तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें करेंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा म्यूजिक कलेक्शन भी लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है इस प्यारे से प्रोग्राम में तमाम तो लोगों के साथ साथ मौजूद है जनाब। और कितने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है मुझे बताएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताएंगे। सो डियर लिसनर्स अंतकीफ हालत कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद अन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे और इन 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें। ओके जनाब सो रेडी हो जाइए, रेडी शेडी होकर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ, बहुत ही प्यारी सी नात हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुनते हैं। उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब होते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती।

क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं चलते क्या नमस्ते, आपके सिद्धार्थ आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बता दें।

थे वो कितने ग्राम का होता है। और उसके अलावा अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर से यानी कि चोरी चोरी चुके चुके हमें सुनते हैं तो क्या करेंगे, अपनी खामोशियों को तोड़ लीजिए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा हो लीजिए और अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8811 पर। और जनाब अगर मुझे फेसबुक पर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, और पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो वहां पर आपको आराम से हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जैसे ही आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। हालात थे हुए मानो जगह पोस्ट के लाइक नाइन करना, जल्दी करो बाबा। बिल्कुल, पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम का हिस्सा है, और मुझे ये भी बताइए कि इंस्टाग्राम जो है वो कितने ग्राम का है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती दुनिया में जो जानी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, यहाँ पर फरवा गुल सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, यानी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सिद्रा मुस्कान, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आप ही आप कैसी हो, आई होप यू आर फाइन वेरी वेल, ये आप बताएं कैसी है। नजीर को सुबह हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, कहते हैं परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है, ये आजजी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और फहीम शेख हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते मौला अलैहिस्सलाम अदर चाल आए अदा खुश आयो सफा भला भाव गानो बधायो भला, न सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। हाजिर हाजिर अखलाक भाई हमारे साथ मौजूद है, हेलो हाले सुल्तान आ चुकी हैं, हाले सुल्तान हेलो वेलकम स्वीटी। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो, हो फाइन आई एम, अच्छा बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपको वेलकम कहते हैं। और फरवा कहती हैं सिस्टर प्लीज पोइट्री रीड कीजिएगा, हम कहाँ वाकिफ थे लोगों की फितरतों से, हमें लगता था जैसा जो दिखता है वो वैसा ही होता है, असां की भी लगंदो हुयो पर हाने खबर पया ना बाबा जमानो मटिजी वयो है। टेंशन न वठो, टेंशन न वठो। और कहती है सिस्टर प्लीज सॉन्ग नथो विसरी मुखा नथो विसरी मां, कोशिश कयां थी तां जे लाइ गानो लाईंदा सी। और किशोर भाई कहते हैं स्मार्ट अजे जल्दी आयो आहे, स्मार्ट जल्दी आयो आहे, जाई बुधा वांदो। भली गाल है, भली गाल। अच्छा ये हमारे साथ है मायरा, कहती है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डियर, वाओ आज तो शो धमाकों से स्टार्ट किया है, ड्राई बुदा, कहती मैं सो रही थी आपकी आवाज सुनी तो बस नींद से उठ गई, अच्छा किया आपने। और एहसन अरबाणी, वालेकुम अस्सलाम, कहते मैडम मुस्कान असा भी अच्छी वया हूँ, खुश सफा चाक चनी भली आन सफा मजे में, तुम दुआओं को पन भी हो, तहाँ हाल हवाल जो ठीक आयो। और किशोर भाई कहते हैं घर के ताने आप सुनकर आती होंगी, हम तो अपनी मैडम के ताने सुनते हैं, किलो फखर सा बुधाए होता ठीक गाला। अच्छा फहीम कहते हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मैं वो दर बूंद के, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, वाह वाह वाह वाह। टॉपिक मो जो वहां का पुछो आए तो मुख्य बुधाए जो यो इंस्टाग्राम आए ना, यो केतरन ग्रामन जो आए। बिल्कुल ताने सवाल जो जवाब बुधाईंदा ही पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा कयो, ठीक आ ना एतरी कंजूसी न कंदा कयो, मुझे पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो। उन का अलावा तमा सांजे प्रोग्राम में जॉइन थी वयो, हते टाइम थी वाई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठू था, उन का पे वापसी जल्दी तवाडे मोटी नासी सारे भी नासी भला ता आगे चले ता इते बैठा हो जो मा ओही वनी ओही मोटा थी, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, चलती के नाम सी तवा जो संजो साथ पूरे 3 बजे ताई बैठा हो जो इते सफा नोट जो।

0: It's 1:30.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड

आरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003885 69।

0: रोशनी जो काफिलो मंजिल तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तदरीसी अमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तजुर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो बाइक कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजा रांदन जो मैदान उते मुनक़द थींदड़ मुकाबला तहरीर तकरीर ज़हनी आज़माइश जा मुकाबला पंहिंजे अखियुनि जे नूर नियाणियुनि प्यारनि पुटनि जे मुनासिब तइलीम तरबियत लाइ अॼु ई मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विज़िट करियो वधीक राब्ते लाइ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन मेमण मैनेजिंग डायरेक्टर मज़हर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमण प्रिंसिपल मज़हर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 3801386543
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबुह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 03001196850
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमण 03001380-8743
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

ओके जी सो हिते तव्हां जा मैसेजेस बिल्कुल पढ़ंदासीं पर तव्हां जे लाइ जेके गाना लिस्ट में रखिया आहिनि सो उन्हनि गाननि जी तरफ़ बि अचूं था ऐं गाना मूं वटि आहिनि तमामु घणा भला भला गाना सो ही वारो ट्रैक सभ खां पहिरियां ॿुधूं था ऐं गानो आहे

बिल्कुल ही सनम सोनो हुजे साकी पो वठण वारा किथे मुड़ना है पीण वारा किथे मुड़ना दाडो भलो गानो हो जेको एंजॉय के असी ना खलावा बियो भी गानो है साइन लिस्ट में बिल्कुल साइन एंजॉय करना सी तमा सगड बिल्कुल सी प्लेलिस्ट आहे न उहा अञा खूबसूरत थी वेंदी आहे जॾहिं तव्हांजा सुहिणा सुहिणा गाना हिन लिस्ट में एड थी वेंदा आहिनि सुहिणा सुहिणा गाना फरमाइश कंदा कयो जीअं असांजी लिस्ट जेका आहे न उहा सुहिणी थी वञे ऐं जॾहिं तव्हां गाननि जी फरमाइशूं कंदा आहियो त थोरो इन चीज़ जो बि ख़्यालु रखंदा कयो त असांजे प्रोग्राम जो जेको टेम्पो आहे उहो ख़राबु न थिए

ये फरीहा परवेज की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, ये पता नहीं क्यों आजकल मेरे जहन पे चढ़ गया है। आपको पता है कि जो गाना मेरे जहन पर चल जाता है बस वो फिर आप लोगों को सुनाती रहती हूँ, आपका दिमाग भी खराब करना होता है ना। बात को समझा करें।

कितना प्यारा गाना है कसमे। अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम कहा जाता है। दातुला कहते हैं अर्ज किया है, अर्ज करते हैं हाँ जी, लिखते हैं मेरे बेरबत ख्यालों में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ मेरी बात में क्या रखा है, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे वरना, गुजरे हुए लम्हात में क्या रखा है, मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है। वाह वाह वाह वाह, भली हुई सफा। फहीम कहते हैं अदर टॉपिक मुख्य खबर कौन है यार, मथुरा आना जाओ। मां तो फुल तैयारी में आया।

अच्छा सुनील कुमार हमारे साथ है, सदरा टॉपिक है नहीं पता ये क्या बात हुई भला। और रहीम जी हमारे साथ, फरमा के दिन टॉपिक इंस्टाग्राम का वेट और आपका वेट इक्वल है, सच्ची बुधायो कसम थी। अच्छा जी खास के लिए लिखते हैं कि असां के चवण की जरूरत ना है सदरा, दुश्मन के जलाने लाए पंजो खिलणी काफी है। वालेकुम अस्सलाम, सही था चो अल्लाह सही था चो अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अच्छा जल्दी आया तो माने वांदा आयो सही है बाबा, नेक्स्ट टाइम पंजे ताली ते आऊंगा। न ये न कजा तुम पूरे 1 बजे इंदा कयो वो अन्या लेट हो जे टाइम ता आयो।

0: ओके जी, जी ये खास के लिए लिखते हैं इंस्टाग्राम कोई। सही है जी, सही है, गाल समझ में अच्छी। रशीद कोसो भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से। रशीद भाई वेलकम कहते हैं आपको, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और चाचा खालिद आप आ चुके हैं प्रोग्राम में, दोबारा से आपको वेलकम कहा जाता है। टॉपिक के ऊपर आपने बात करी है, ओके जी। और ये जो सवाल है ना, छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से कितनी छोटी है, तो ये हमने पूछ लिया था प्रोग्राम में, अब बड़ी का पूछेंगे। अच्छा कयाला। ना बाबा गानो वडो ना है, गाने के वडो कयो वयो है।
1: गाने भी छे मामू जी पचराणी कयो मां सही आवन वन छा याद कंदो।

अच्छा हमारे साथ ये गोट मामन तैयब थीबू का हबीबुल्ला थीबू भाई के सॉन्ग बुध रहा है जो ठीक है बिल्कुल यो गाना तांजले हलाइंदा सी थैंक यू तांसा सगड मौजूद आए टॉपिक इते फॉलो कयो वही कौन है तेरे जी सोनी कोई होर नहीं हाय हाय लखनऊ तुझे तो भी हलांदी है लगदा है सारा ही पलो अच्छा पांच सीट ते वेरो मां तड़े ते तांगे चवंदी है न तई दिसो धक्का खाइंदो

प्रेमचंद भाई हमारे साथ हैं, गो टू जान मोहम्मद जूने जो प्रेम मिस्त्री साहिल वालेकुम अस्सलाम नमक ग्राम जो थींदो आहे इंस्टाग्राम अल्लाह जाई बुधाए जा अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर कर अना ताई अगर तव नाए कयो तो लाइक रो जरूर करे सडीदा कयो और मीर तारिक बलोच कहते हैं मीर तारिक बलोच लाड़काने खां आई मुंजो नंडो भा मोहम्मद अजीम भी शामिल आए प्रोग्राम में वाह वाह बिनी भाऊ जो मोहब्बत वन प्रोग्राम में तवा के चौथा भली करी आया रेहाना खाना में सुन रही हैं बखर से रेहाना

लाख भाणी वजन थोड़ो घटे जो वे तो ये जो मिला थोड़ा में थोड़ो लगे तो तांगा मिस्टेक थी गयो है।

फरवा, बिल्कुल आपका टॉपिक ऊपर वाला जो मैसेज है वो हमने रीड कर लिया था और हिदायतुल्लाह कहते हाँ जो आके सर पर चढ़ जाए वो सॉन्ग हमें सुनाकर ही दम लेती हो, हाँ ना। बाकी था डांस एंकर तो गाना बुझे ना जो मजो ही है। अली अकबर बरोही भाई में सुन रहे हैं सक्रिय से, आपको कहते वेलकम, आप कहते प्रोग्राम की जितनी तारीफ करें गुड, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कमर जमान बलोच तमाजी पसंद जो गानों बिल्कुल हलाइंदासी तमाशे ने प्रोग्राम में मौजूद आए, सो थैंक यू। मायरा कहती सिद्रा आपने कल भी मुझे गाना नहीं सुनाया था, आज मुझे जरूर सुनाना। ये कौन सा गाना है मुझे बताइए जरा, अगर मिल गया तो लगा देंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है। अरे स्मार्ट भाई थे, हमारा तो वैसे ही दिमाग खराब है, तने ही ते ईद आयो तुम और हम एक जैसा है, हाँ ना तुम और हम एक जैसा आयो तने ऐसा है कभी संगत ये हूं तो आमी भी चंदिया जेको मानू जेड़ो ना नो नसा उने संगत में उड़ाई मानू हुंदा है। सो असा पान करे को ऐसा लिसनर भी करे।

बाबा मलकू शाम जो अचे मंझंदि जो अचे पान जो अथसि जंहिंमहिल दिलि चवे हलियो अचे टेक साशा भला मलकू ते बि न कयो बाबा अकुल रिको पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा वापसी जल्दी मोटी तव्हांजी नासी तव्हां कॾहिं हिन में जो हिते वेठा हुजो मां असली ओहिय वञी ओहिय मोटाव थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जल्दी कंदा मसी आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका जे मुआशी हमले जो ऐलान फौजी माज ते नाकामी जो इतराफ़ आए। ईरान पासदार इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल असी मौजवी चयो आहे त अमेरिका

0: कामयाबी मिले हा त मुआशी मैदान में छोर न करे हा। ईरानी फौज दुश्मन के पोते अटन ते मजबूर कयो आए। जंग में तेहरान कामयाब थियो आए।
1: वरे वजीर सैद मुराद अली शाह जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात से मामलन जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल बिन्हीं अगवाड़न गडियल दिलचस्पी वारन मामलन मौजूदा सियासी सूरत हाल से विचारन की देवत कई रवादारी सियासी मुशावरत वो सिलसिलो जारी रखने से इतफाक राणा सनाउला मोहम्मद औरंगजेब नजीक तारड़ अहमद चीमा अली परवेज मलिक शिजा फातमा ए बया भी मुलाकात में मौजूद रहा।
0: आजाद कश्मीर के कानून साज असेंबली के मखसूस सीटन लाइ पोलिंग जो अमल मुकम्मल। नून लीग अठ मखसूस सीटन मां शान ते कामयाब। पीपल्स पार्टी बस सीटू हासिल कर सकी। औरतों के पंज मखसूस सीटन मां टिन ते नून लीग ए बिन ते पीपल्स पार्टी कामयाबी माणी। आलम ए टेक्निक के सीट ते भी नून लीग हासिल करण में कामयाब थी। नून लीग के सहरिश कमर मरियम जमान ए मरम एड्रेस कामयाबी माणी वरती। पीपल्स पार्टी के फरजाना याकूब जोया खुर्शीद बेन भी कामयाबी माणी। आलमन के सीटन ते नून लीग जो पीर मजहर सईद शाह ए टेक्नोक्रेट के सीट ते बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाबी माणी।
1: कराची के नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की अदालती जांच के वारसन रद्द कर छोड़ो। अदालती कमीशन जोड़न वाली हुकूमती फैसले खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल। केस की जांच लाए जीआईपी जोड़न जो फैसलो। वकील जिब्रान नासिर चवाए तो जांच कमेटी की सिफारिश से अदालती कमीशन ठाई वेंदी है। हुकूमती फैसले बाबत वारसन के आगाह ना कर मीडिया जरिए खबर पई है तो असाजे चौवीह सवाल में कें लेक जो जवाब ना मिलो। मीर रजा का आखिरी फोटेजिस भी नथा दिना वन।
0: भान सैदाबाद समेत सेवन तालुके में 212 स्कूलों की इमारतों खतरनाक करार। सील करण जो हुकुम सेवन भान सैदाबाद झांगारा बिरे बोबकवाड़ टल्टी बम्बा शाक बेन इलाक स्कूल जबून हाल बनल। तालुके सेवन अंदर 28 एलिमेंट्री तोड़ी हाई स्कूल भी खतरनाक करार। 184 प्राइमरी स्कूलों की इमारतों खतरनाक होने सबब स्कूल भी हंध मुंतकिल कर फैसलो। सुजाण धुरन पारा स्कूल के इमारतों की फौरी तौर से मरावत कराने जो मुतालबो।
1: बगुण के मुख्तलिफ शाखन में पानी को खिलाफ आबादार सराबा एतजाज नजायरे ते धरणो। खावर शाख मनु शाख मीरवाल लुंडी शाख ए बेन शाखन में पानी को खिलाफ आबादार एतजाज कयो। आबादारन जो शाखन में पानी छोड़ करण जो मुतालबो। मीरपुर साखरो में लगिया वाह जाम ब्रांच ए लुंडी शाख में पानी को खिलाफ आबादारन जो एतजाज। आबादार एक्शन कमेटी के सदे पानी को खिलाफ लेटर स्टाफ ते एतजाज मुजाहरो कयो। शाखन में पानी
0: सेवण में पेट्रोल के सड से सर्विस स्ट्रक्चर के बहाली ला एतजाजी रैली। उस्तादन जो चवण है तो सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादन जो जायज हक है। देर ए कोताही के कबूल न किया वो सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन तीन जदोजहद जारी रखा। नोटिफिकेशन जारी कयो जे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नमस्ते। और यहाँ पर आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते हैं, शामिल प्रोग्राम हो जाते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं 888 और फेसबुक पर। तो प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जो लोगों ने अभी अभी सुना है, स्टार्ट किया या फिर जो लोग स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ऐसे के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि ये जो इंस्टाग्राम होता है ये कितने ग्राम का होता है, बताएं तो जरा, पता तो चले। बिल्कुल जी, मासूम से सिद्धरा का मासूमाना सवाल। ओके जी, आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाले लोग जो होते हैं ना वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। उनका अलावा जितना भी प्यारा प्यारा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, बाबा ही प्रोग्राम तव्हां सभिनी माण्हुनि जो आहे। ऐं प्रोग्राम में अगरि तव्हां मौजूदु आहियो त ॿुधाईंदा कयो त हा भाजी असां गॾु आहियूं, तव्हां सां ॿुधूं पिया तव्हांखे। और उनखां अलावा अच्छा, ये चीज एक ऐसी है ना जो मैंने आजकल नोटिस करी है, लोग ऐसा करते हैं ना जिंदगी में, वो ये सोचते हैं कि बस जिंदगी में आगे निकलना ही सब कुछ होता है। जैसे जिंदगी कोई दौड़ है, जिंदगी कोई रेस चल रही है और रेस को जीतना ही लोगों के लिए ऐसा है कि बस सब कुछ हो चुका है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जनाब, हर वक्त दूसरों से आगे निकलने की फिक्र में रहने वाले लोग जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी जो है वो कितनी खूबसूरत है और कितने खूबसूरत तरीके से जिंदगी को गुजारा जा सकता है। लेकिन वो अपनी भाग दौड़ में, अपने रोजमर्रा के कामों में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें इस चीज का भी पता नहीं चलता कि हम इस जिंदगी को जो है ना वो दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। अगर आप जब रियलाइज करते हैं, मैंने बहुत सारी खवातीन को वैसे देखा है जो भाई बिलावजह बहुत सारे काम करती हैं, जो काम नहीं होते करने के लिए वो काम भी कर रही होती हैं बार बार। तो अगर आप अपने घर में, बिल्कुल जी काम करना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन उतना काम किया करें जितना जरूरी होता है। हर वक्त खुद को थकाते रहना और वो तमाम काम करना जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके काम है ही नहीं, उन कामों में अगर अपना वक्त और अपनी एनर्जी जाया करते रहेंगे तो आप अपने आप को कब टाइम देंगे। खुद को टाइम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये चीज आप मेरी जो है ना लिख कर रख ले, जब तक आप अपने आप की कदर नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, खुद की वैल्यू नहीं पहचानेंगे, तब तक लोग आपको बेकार समझेंगे। तो अपनी कदर कीजिए, खुद को वैल्यू दीजिए और खुद को इज्जत दीजिए, तब जाकर लोग आपको वो तमाम मकान दे सकेंगे जो आप चाहते हैं। तो जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमने ये सीखा है कि जिंदगी ने हमें बिल्कुल इतना तो सिखा ही दिया है कि ताल्लुक इतना ही रखो जितना सामने वाला संभाल सके। हद से बढ़कर दी गई इज्जत अक्सर बेइज्जती की सूरत में आपको वापस मिलती है। तो कोशिश किया करें कि उतनी ही लोगों को इज्जत दें, उतना ही लोगों को टाइम दें, उतना ही लोगों को रिस्पॉन्स दिया करें जितनी वो बर्दाश्त कर सके। उनके अंदर वो बर्दाश्त होनी चाहिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कम जरफों को अगर आप हद से ज्यादा, चाहे वो इज्जत हो, प्यार हो, टाइम हो, दे देते हैं तो फिर वो आपको बेइज्जती की सूरत में ही चीजें वापस मिलती है। तो कोशिश करें खुद को वक्त दें, अपनी जरा कदर पहचाने और खुश रहने की कोशिश करें। ओके जी, सो प्रोग्राम आप लोगों का अपना है और यहाँ पर हमारे साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं। बिल्कुल जी, शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक गाना है तो हम जरा पहले ऐसा करते हैं, गाना सुन लेते हैं। ये मायरा की चॉइस के ऊपर गाना होने वाला है। मुझे थोड़ी देर के बाद ही समझ आएगा, अच्छा मायरा इस गाने की फरमाइश कर रही है। क्योंकि गाने का जो टाइटल होता है वो कुछ और होता है, आप फरमाइश कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो चलें ठीक है, गाना एंजॉय करते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। और जी आपके मैसेजेस की जानिब आते हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया देना, इसका इंतजार कर रहे हैं।

देखिए जयपाल भाई बोले बोले क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो कहते रऊफ मक्सी का गाना सुनाए हाजिर एडा जो सब गाना जी फरमाश करना तो केंजा केंजा गाना हलाई दो। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम बाजी सिद्रा मुस्कान शो नाइस है सॉन्ग सुनाए मुमताज मौलाई का जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है सॉन्ग कुछ बोले यो गानो बिल्कुल बुद्धो आ पर थोड़ो मुखे अजीब तो लगे ऐ तां खबर अजीब गाना मां पाने प्रोग्राम में नया लाइंदी।

बिल्कुल जी, असां बाबा जिंदगी इंजॉय कंदा आहियूं, बिल्कुल जिंदगी इंजॉय कयो। जेको मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदो हूंदो उहो सभु वाकई मूंखे लॻंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी इंजॉय करण वारा माण्हू आहिनि। और ये बिलाल अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते मोहतरमा गानो ॿुधराईंदा छो थो नाराज़ थिए तूं? अच्छा ठीकु आहे, मां ॾिसां थी कहिड़े सिंगर जो गानो आहे। बिल्कुलु हलाए वठूं था, मिली वियो त साजिद अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम जी, कहते हैं हाँ हाँ आपको वेलकम कहते हैं। फरवा के दिया आज मैडम का मूड बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी बस आज ही होगा, कल वरी सागो ओड़ो मूड जड़ो कल हो लगे तो ता मुके नजर नहीं सरींदा आयो।

अच्छा वही बात, जयपाल भाई कहते हैं कल भाऊ सेठ थी, अच्छा क्या हुआ था? नहीं हुआ ही गाल एकड़ो डी, मुझे मूड सही तो रहे बेड़ी वरी उदास आया हलाए छु हाँ अजो दिसो मतलब अजो सही मूड आ वरी सुभाणे ई ही होंदो हीअं न जी अॼु आहे मतिलबु जे कल्ह हुयो अहिड़ो की दी यार जवाब ना में इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ और मुझे ग्राम का पता भी नहीं है। सही आहे सही आहे वोट हाची गुलाम ख़ासि के लिए लग झंडो मरी खां कुर्बानी ख़ासि के लिए अवां जो आवाज़ मिठो ऐं सुहिणो आहे। ओके थैंक यू।

हक़ीक़त ई आहे बिल्कुलु कुझु माण्हुनि जे प्रोग्राम में हुजण सां बि मुंहिंजे मूड ते फ़र्क़ु पवंदो आहे अलाह हक़ीक़त अथव इहा और साजिद हुसैन सुमरो वालेकुम अस्सलाम भा तव्हां असांखे ॿुधो पिया DIG ऑफिस लाड़काना खां शाहिब बाबर जो गानो बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईं था थैंक यू तव्हां सां गॾु आहियो हाँ हाँ हिदायत तला बिल्कुल आप सही कह रहे भाई मुमताज मलाइका ना कुछ गाने अच्छे मतलब सुनकर अच्छा लगता है कुछ गाने अच्छे मतलब ऐसा है कि अब जो मुमताज मलाइका के ट्रू वाले फैंस होंगे ना वो सोचेंगे सिद्रा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं लेकिन भाई अलाए जो तबियत मूड जो हिसाब हों सब गाना नायन सुठा लगंदा मास्टर मंज़ूर जी अगरि ॻाल्हि कई वञे मास्टर मंज़ूर जो अगरि फोल्डर खोलियो वञे हुनजे कंहिं बि गाने खे रेंडमली कोई बि गानो असां मतलबु लिस्ट में लॻाईंदासीं न उहो गानो वणी वेंदो मतलबु हीअ ॿुध त ईअं वाह वाह ईअं सवा मज़ो अची वेंदो पर ईअं कंहिं कंहिं सिंगर जी क्वालिटी हूंदी आहे त हुनजो जेको बि गानो तव्हां ॿुधो अथव तव्हांखे सुठो लॻंदो पर ईअं इहा जेका आहे न कंहिं कंहिं सिंगर जी क्वालिटी हूंदी आहे सभिनी जी सम्झो था मेरा क्या कहने का मतलबु चलो ॾिसो गाननि जा के गाने खां पोइ असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ते वञूं था उन खां पोइ तव्हांजी जल्दी मोटी नासी तमा कडी ने मजे ते बैठा हो जो मा ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून से कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जेएफएम88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं जल्दी गाना मस्ती

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजह स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम हस्ती. बिल्कुल जी, आपकी सिद्राव के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामिल प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं. तो आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग मेरे साथ ना फेसबुक पर मौजूद है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें. उन्हें के अलावा मुंह जमा का सवाल पुछो आए तो मुख्य बुधायो इंस्टाग्राम जो आए वो केतरे ग्रामन जो आए सवाल पुछो.

ड्राइव द कजंदर। मेरे बहुत ही अच्छा सा गाना जो कि हम एंजॉय करें और साथ ही साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं, तो बिल्कुल जी आप लोगों के साथ बातें करेंगे। और हाँ बिल्कुल अच्छा, तो ये हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़काना की कूंज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, हाय आपके प्रोग्राम की क्या बात है, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। कूंज फायजा का नया गाना सुना, फायजा हले पई बुदोस फायजा के, और कहते हैं थैंक्स सो नाइस ऑफ यू कूंज, थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। और ये प्यारे भाऊ कहते हैं मेरी बात भूल गई कि टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल, ये बात तो मुझे याद है मेरे प्यारे भाऊ। और गोट मोहम्मद थीबू का हाबी बोला, थीबू कहते हैं सॉन्ग बुध रायो चंडर जो टुकड़ो लगे तो अजे तो तू जाने तो मोला, यो तो मुखा विसरी।

चलें जी बिल्कुल टाइम बची वियो त सभिनी जा गाना हलाए वठंदासीं पर हाणे गानो हेॾो वॾो हूंदो आहे टाइम असांजे प्रोग्राम जो सफ़ा ओ हेतिरो आहे कहिड़ा कहिड़ा गाना मां हलायां सो चलो जंहिंजो रेज़ी वञे थो पंज बजे वारे प्रोग्राम में हलाए वठंदासीं उन खां अलावा हीउ हिकिड़ो गानो आहे जेको शाहिद बबर जी आवाज़ में आहे शाहिद बबर जी गाने जी फरमाइश बि कीअं करे छॾी हुई सो हीउ गानो उनखे डेडिकेट कयूं

नहीं बाबा, सॉफ्टवेयर की बात मत करो बाबा, मत करो. वो गाला ना हो तो गया है, पर अगला मनता नहीं है, मनता नहीं है. मन वड़ी गाला है. और चाचा कहते रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नो, और हमेशा सच का साथ दें बेटा. बिल्कुल जी, सच का साथ देंगे. बुधायो के सच गाला उन जो साथ दियनो आसान.

0: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुन रहे हो। नखा इलावा फहीम सैया मगाल के समझी व्यस और मोहम्मद जमान भाई के टॉपिक जितना जुबान पे लफ्ज इंस्टाग्राम का वेट भारी है उतना इंस्टाग्राम का वेट भी है। अच्छा इन दिमागाना रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बहन शो में आप सबको भाई बहनों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमें सुन रहे हैं तो शंबानी भाई को भी वेलकम कहते हैं। ओके जी, केसर भी हमारा शो सुन रहे हैं, केसर आपको भी वेलकम कहते हैं। फरवा लिखती सिस्टर आरजे सिद्रा मुस्कान, आपकी कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त है, सुपर डुपर ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। और हैप्पी आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड क्यूट आरजे, क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, खैर से आ गई इस प्यारे शो में, वेलकम टू शो जाना। ओके आप स्कूल से वापस आ गई होंगी तो आपको वेलकम कहते हैं। असे नन्न लाड़का ना की रानी ना आया, मां पांजे घर जी रानी आया।
1: बाब महेश्वर जड़ो माहू को मिलई शल,
0: वैसे यू भी ना यू तो ठहे, मैं उनके दिल की रानी हूँ बस।
1: जी का
0: गाल मजो भी नहीं।

ओके जी, ॾाढो भलो गानो जेको असां एंजॉय कयोसीं. ॿियो गानो असांजे लिस्ट में आहे, बिल्कुलु ही बि असां ॿुधंदासीं. बिलाल हिन गाने जी फरमाइश करे छॾी हुई, मूंखे लभे कोन पियो पर सम्झो त अच्छा ही वारो गानो हूंदो. सही सही.

चाचा छाजो आसरो केंगनु आसरो रत जानी रत अखड़े ने मावे ठोहारी दे हाने सोचो हाय हाय। अच्छा ये हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिद्रा? शो ऑसम ऑलवेज, आई एम हिरा। हिरा हमारे साथी, और हिरा आपने आगे जो लगाए सब ठीक है, बस बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहे। और किशोर भाई कहते हैं मैं कराची का हूँ लेकिन वो लाहौर की नहीं है, वो किथा की है बुधायो। और साजिद भाई कहते हैं हम दोनों हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी है। अच्छा हिरा कहती है चलती का नाम मस्ती, रुकती का नाम खटारा बिल्कुल बिल्कुल।

एॾा ॾुख आहिनि माण्हुनि जी ज़िंदगीअ में. अलाह तौबा तौबा. अच्छा जयपाल भाई, कहते हैं भाऊ रात को हमारे सिटी में हवा आई थी, अनुष्का ने बताया था यहाँ का मौसम नाइस है. हाँ रात तूफान आयो, तूफान.

अच्छा हिरा की थी, राहत का कोई भी सॉन्ग प्ले करना, डेडिकेट टू आरिफा, रिमशा, उरूसा एंड फरहान। अच्छा चलिए जी, मैं देखती हूँ अगर अभी नहीं प्ले हो सका तो हम शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनेंगे, ठीक है। और बहुत शुक्रिया स्वीटी, आप हमारे साथ हैं। और जी ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रेक जिसकी हमें फरमाइश कर दी थी अदा फहीम, मुख्य अदा चवड़ी भलो लगन हुआ है अदा सुठो साउंड कंदो आहे।

0: अच्छा झुलरी खां खालिक लाशारी हमारे सारे शो बुधू पया चाय भी पियो पया वाह साईं वाह एंजॉयमेंट हले पई कयो कयो
1: न कोई महल जाने मन तुझको मैं
0: ही पेरियों काको आ जेको पांजी महबूबा के मतलब को वडा वडा सपना न थो देखारे न त ब्याह त चवंदा न त बाबा असा ही भी कंदा सी ही भी कंदा सी ही भी कंदा सी पर वैसा कूड़ हुंदा है
1: तुझको दूंगा दुख सुख का साथी बनो
0: ही अदो भलो आए एटलीस्ट सच त गाला है तो

भाई रड़ियों का पैकेज खत्म नहीं हुआ, गाना अड़ा फरमाइश कंदा मां छा गया है ना, गाने में रड़ियों के आना मानू चरियो समझूंगा तुझको मैं मूड तो असाने भलो पर गाना में तब ता भला भला फरमाइश के जैसा रड़ियों करे सको असान के अरमान दिल में रेजी था वने वो पूरा थे ये न क्यों बाबा ये न कंदा करो रमजान भा तां जो मोहब्बत वन दा प्रोग्राम उदो पया गुलाम हुसैन हेलो हेलो और मोहम्मद अली खोसो भासे से गड मौजूद आए वालेकुम अस्सलाम फहीम कहते भाऊ ताने भी तूफान आयो छा रात छो मां पेरिस में रहंदी आया छा इन ही लाड़काने में रहंदी आया जमे ता रहंदा आयो हां अदा डाडो भलो साउंड कंदो आयो मुंजो प्यारो अदा अरे चलो हाने बस मां वणा मती घणो थियो खिचको

अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि भाऊ अब कुछ काम करूं, भाऊ इजाजत है, दुआ में याद हर वक्त रहती ही आप, और हैप्पी रहें, खुदा आपका और हम सबका हामी और नासिर, ओके ख्याल रखें अपना, ओके बाय एंड टेक केयर भाऊ, ओके भाऊ ओके पांडुला सरो ख्याल रखना, आई बिल्कुल ये दौर में याद रखना, वरी तां सां मिलूं था बाबा साईं असां 5 बजे वारे प्रोग्राम में, 5 बजे तां मूंखे जॉइन कंदा। हिरा जेको आहे न सो पहिरियां आसिरो ॾेई वेठासीं सो छा था करे सघूं, तूफान बि चवंदो हूंदो मां काॾे वियो आहियां, कहिड़नि माण्हुनि जे हथ अची वियो हुयो हिकिड़ी ॻाल्हि खे पकड़नि था त जानी नथा छॾनि। चलो सो हाणे बसि मोकिलाणी न आहे, 5 बजे वारे प्रोग्राम में जॉइन कजो, सो मोकिलाणी न आहे बाबू, सिन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका के ईरान खिलाफ़ डी डे की शुरुआत थी वही है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस है तो ईरान वट आलमी बहरी रस्तन की मुकम्मल तौर से बंद की सलाहियत मौजूद ना है। मुआशी नाकाबंदी तेहरान के तबाह कर छींदी अमेरिकी नाणे वाले वजीर स्कॉट पेंट है तो अस आखिरी मरहले में दाखिल थी रहा हूं। दुश्मन खिलाफ़ सब का वही मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छो है। अमेरिका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी मुआवजे से नाकामी का इतराफ है। ईरान पासदार इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मौजवी है तो अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले तो मुआशी मैदान में शोर न करे। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर किया है। जंग में तेहरान कामयाब थो है। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिंध के मामलों ए जारी तरक्याती मनसूबों से तफसीली गाल बोल बिन्हीं अगुवाणन गडियल दिलचस्पी वारन मामलों ए मौजूदा सियासी सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई। रवादारी ए सियासी मशावरत वारो सिलसिलो जारी रखने से बेतफाक राणा सना लाय मोहम्मद औरंगजेब आजम नजीर तारण अहमद चीमा अली परेज मलक चीजा फातिमा ए बिया भी मुलाकात में मौजूद। आजाद कश्मीर

0: मकसूद सीटन मां छहनि ते कामयाब पीपल्स पार्टी ॿ सीटूं हासिल करे सघी। औरतुनि जे पंज मकसूद सीटन मां टिनि ते नून लीग, ॿिनि ते पीपल्स पार्टी कामयाबी माणी। आलमन ऐं टेक्नोक्रेट जे सीट ते बि नून लीग हासिल करण में कामयाब थी वई। नून लीग जे सहरिश कमर मरियम ज़मान ऐं मरियम इदरीस कामयाबी माणी। पीपल्स पार्टी जी फरज़ाना याकूब, सुपिया खुर्शीद बि कामयाबी थियूं। आलमन जे सीट ते नून लीग जो पीर मज़हर सईद शाह ऐं टेक्नोक्रेट जे सीट ते बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कामयाबी माणी। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾी। जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो। सिंध हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं चीफ जस्टिस खे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण लाइ ख़त लिखियो। कराची जे नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी अदालती जांच खे वारसन रद्द करे छॾियो। अदालती कमीशन जोड़ण वारे हुकूमत जे फैसले ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। केस जे जांच लाइ जी आर डी जोड़ण जे मुतालबो वकील जिब्रान नासिर चयो आहे त जांच कमेटी जी सिफारिश ते अदालती कमीशन ठाही वेंदी। हुकूमत फैसले बाबति वारसन खे आगाह न आहे कयो। मीडिया ज़रिए ख़बर पई आहे असांजे 24 सालनि मां कंहिं हिक जो बि जवाब न आहे मिलियो। मीर रज़ा जा आख़िरी फोटेजिस बि न पिया ॾिना वञनि। मिठीअ में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बाइकाट रैली कढी धरणो बीहायो वियो। वकील जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। अहमदाबाद समेत सेवण तालुके में 212 स्कूलनि जूं इमारतूं ख़तरनाक करार सील करण जो हुकुम। सेवण, बांस, अहमदाबाद, जांगारा, बुबकवाड़, टल्टी, बंबा, चाक ऐं ॿियनि इलाइक़नि जा स्कूल ज़बून हाल बणियल। तालुके सेवण अंदरि 28 एलिमेंट्री थोरी हाई स्कूल बि ख़तरनाक करार। 124 प्राइमरी स्कूलनि जूं इमारतूं ख़तरनाक हुजण सबबि स्कूल बि हंधि मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो। सुञाण धुरनि पारां स्कूलनि जी इमारतुनि जी फौरी तौर ते मरामत करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अगर
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

न करिया ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने ते मजबूर कयो आए जंग में तेरान कामयाब थियो आए वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात सिंध के मामलन ए जारी तरक्याती मनसूबन ते तफसीली गाल बोल बिनी अगवाणन दिलचस्पी वारन मामलन ए मौजूदा सियासी सूरत हालत भी ख्याल जी डेवट कई रवादारी सियासी मशावरत वारो सिलसिलो जारी रखने ते इतफाक राणा सना लाए मोहम्मद औरंगजेब आजम नजीर तारण अहमद चीमा अली परवेज मलक शीजा फातमा ए बिया भी मुलाकात में मौजूद।

लीग 8 सीटन ते कामयाब। पीपल्स पार्टी 2 सीटू हासिल करे सघी। औरतुनि जे 5 मखसूस सीटन मां 3 ते नून लीग ऐं 2 ते पीपल्स पार्टी कामयाबी माणी। आलमन ऐं टेक्नोक्रेट जे सीट बि नून लीग हासिल करण में कामयाब थी वई। मखसूस सीटन ते इलेक्शन बाद चूंडियल शायतलनि मेंबरनि हलफ खणी वरितो। आज़ाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर नून लीग चूंडियल मेंबरनि खे हलफ खणायो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾी। जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो। सिंध हुकूमत गुज़िरियल ॾींहुं चीफ जस्टिस खे वापारी मीर रज़ा जे जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण लाइ ख़त लिखियो। मीर रज़ा क़तल केस में अदालती कमीशन जोड़ण ऐं GIT क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी। जस्टिस अदनान करीम मेमण जे धुरियुनि खे नोटिस जारी करे छॾिया। 31 अगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा, डॉक्टर सीमा केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेंबर्स समेत 19 ॼणनि खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिबरान नासिर चयो आहे त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते न आहे पहुती। अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा। कमीशन जी इंक्वायरी के अदालत में चालान तौर पेश नथो करे सके। गडियल

सिंध में नवन सूबन के पीपल्स पार्टी खुलियल तौर ते रद्द कयो आहे। सिंध जो विरांगो कबूल न आहे। सिंध जा माण्हू सिंध के पंहिंजे वतन समझन था। सिंध सदन खां आबाद आहे, आबाद रहंदी। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त उस्तादनि जी फीस फ्रेम ऐप खे 6 ज़िलनि में लागू कयो वियो आहे। कुझु माण्हुनि खां फीस फ्रेम ऐप हज़म नथी थिए। जदीद टेक्नोलॉजी मदद वठंदासीं। फीस फ्रेम सिर्फ़ उस्तादनि लाइ न आहे पर समूरे अमले लाइ आहे।

जो बाइकाट रैली कढी धरणो बिहायो वियो। वकीलन जो चवण आहे त सिंध हज़ारन सालन खां मौजूद आहे, संदस तहज़ीब खे टोड़े नथो सघजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। फहमीदा पिताफ़ी अॻवा खे सॼी सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿुधणी। DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण, SSP सखर अनवर खेतरान ऐं धुरुनि जा वकील पेश। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ते ॿधल सिंगल बेंच पुलिस जी कारकर्दगी खे सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे DIG सखर खे छंड। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना त अव्हां जी कारकर्दगी खे ॾिसी लॻे थो त हिननि डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई न आहे। जेकॾहिं अव्हां अदालती हुकमनि ते अमल नथा कराए सघो त उते तव्हां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत DIG सखर खे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त IG सिंध खे अदालत में तलब कंदासीं। अदालत केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेम्बर ताईं मुलतवी कंदे औरत खे अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾिनो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। वगण जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज। इंडस हाईवे ते धरणो। पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो आहे। मीरपुर साकरो में लुधियावा जाम ब्रांच ऐं गुंगी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगार एक्शन कमेटीअ जी सॾ ते पाणी खोट ख़िलाफ़ लेफ्ट स्टाफ वटि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शाखुनि में पाणी शोर करण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटियलब जे सॾ ते उस्तादनि जा मुज़ाहिरा। मटियारी सेवण पीर जे ॻोठ में प्राइमरी उस्तादनि एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरणा आया। अॻवाणनि चयो आहे त सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादनि जो जाइज़ हक़ आहे, देरि ऐं कोताही क़बूल न कयो वेंदो। सर्विस स्ट्रक्चर जे नोटिफिकेशन ताईं जिदोजहद जारी रखंदासीं। सखर में 14 महीननि खां ड्यूटी कंदड़ PST ऐं JST उस्तादनि जो पघारुनि न मिलण ख़िलाफ़ एहतजाज। उस्तादनि डायरेक्टर ऑफिस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। मुज़ाहिरीन चयो त खेरपुर ऐं घोटकी ज़िलनि जे मुख़्तलिफ़ तालकनि में 14 महीननि खां ड्यूटी करे रहिया आहियूं। 14 महीना गुज़रण बावजूद पघारूं जारी न आहिनि थियूं। परेशानियुनि जो शिकार आहियूं। डायरेक्टर ऑफिस ऐं DO ऑफिस जा चकर काटे थकिजी पिया आहियूं, पर पघारूं न आहिनि मिलियूं।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और GA FM 94

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आखिरी मरहले में दाखिल थी व्या आयु दुश्मन खिलाफ सब का वड़ी मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छो। अमेरिका के मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ़ है। ईरान पास्तान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा चुका है तो अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा तो मुआशी मैदान में शोर न करे हा। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर कर जंग में तेहरान कामयाब थो है।

सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, सिंध के मामलों ए जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल, बिन्ही अखबारों गडियल दिलचस्पी वाले मामलों ए मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी ख्यालन की डेवट गई, रवादारी ए सियासी मशावरत वालों सिलसिलो भी जारी रखने से इतफाक, राणा सनाउल्लाह मोहम्मद औरंगजेब आजम नजीर तारड़ अहमद चीमा अली परवेज मलिक शिंजा फातमा ए बया भी मुलाकात में मौजूद हुआ। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के मखसूस सीटों लाए पोलिंग जो अमल मुकम्मल, नून लीग 8 मखसूस सीटों में 6 ते कामयाब, पीपुल्स पार्टी 2 सीटू हासिल कर सकी, औरतों की 5 मखसूस सीटों में भी 3 ते नून लीग ए 2 ते पीपुल्स पार्टी कामयाबी हासिल कई, आलिम ए टेक्नोक्रेट की सीट भी नून लीग हासिल करने में कामयाब, मखसूस सीटों से इलेक्शन बाद चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खड़ी वरतो, आजाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर 9 चूंडियल मेंबर्स के हलफ खड़ा। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो, जस्टिस उमर सियाल कमीशन की सरबराही कंदो, जांच लाए महीने जो वक्त मुकरर, कराची के मेयर मुर्तजा वहाब चयो है अदालती कमीशन ते मीर रजा के वारसन के सहकार करनो पवंदो न तो ये सिलसिलो हलंदो रहंदो, जांच दौरान थियल कोताहिन के सामूं अचण घुर्जे, पुलिस ए जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा, हुकूमत की तरजीह मीर रजा जमीन करना है। मीर रजा कत्ल केस में अदालती कमीशन जोड़ खिलाफ ए जीआईटी की क्याम लाए वारसन की दरख्वास्त सिंध हाईकोर्ट में बुधड़ी, जस्टिस अदनान करीम मेमन दरन के नोटिस जारी कर छाया, 31 अगस्त जवाब तलब, दरख्वास्त में मीर रजा जो पोस्टमार्टम कदड़ डॉक्टर उसामा ए डॉक्टर समैया केस की जांच कदड़ टीम के मेंबर समेत 19 जणन के दौर बनाया वो, दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर चो तो पुलिस की जांच अजा तीन कें हतमी नतीजे से ना पहुंती, अदालती कमीशन से केस की जांच से नाकारी असर पौंदा, कमीशन की इंक्वायरी के अदालत में चालान तौर पेश न कर सकते, गडल जांच टीम कायम करण जरूरी है। सिंध में नवन सूबन के पीपुल्स पार्टी खुलल तौर से रद्द कर, सिंध जो विरांगो कबूल ना है, सिंध जा मानू सिंध के पैं वतन समझन था, सिंध सदन का आबाद है आबाद रहंदी, सिंध के तालीम वाले वजीर सरदार शाह है तो उस्ताद की फीस फ्रेम एप के छह जिलों में लागू किया है, कुछ मानून का फेस फ्रेम एप हजम नहीं थे, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद वी फेस एप सिर्फ उस्ताद ला ना है पर समूरे अमले ला है। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ की लताड़ खिलाफ एहतजाज कदड़ उम्मीदवार शागिर्दन के कैंप से कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पली जो जी आमद, शागिर्दन से यकजहती जो इजहार, अयाज लतीफ

जो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक बादशाही इदारो बणजी वियो आहे जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसूं सिंध न ॾिसो जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलंदा। अमली कदम खणण ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। मिठी में थरपारकर बार एसोसिएशन पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बॉयकॉट, रैली कढी धरणो बीहायो वियो। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध हज़ारनि सालनि खां मौजूदु आहे, संदसि तहज़ीब खे टोड़े नथो सघिजे। सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो। पामींदा पिताफ़ी अॻवा केस जी सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿुधणी। डीआईजी सखर, एसएसपी सखर ऐं धुरनि जा वकील पेश। अदालत पारां फामिंदा लिगारी जी अदम बाज़ियाबी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। डीआईजी सखर खे बि छॾ, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना। तव्हांजी कारकर्दगी ॾिसी लॻे थो त हिन डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई नाहे। जेकॾहिं अवां अदालती हुकुम ते अमल नथा कराए सघो त उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत तव्हां खे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त आईजी सिंध खे तलब कंदासीं। केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेंबर ते मुलतवी।

सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में आबादगार जो पानीकोट खिलाफ़ एहतजाज वगण के मुख्तलिफ़ शाखन में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार सराफा एहतजाज पढ़ल इंडस हाईवे से धरणो पावड़ शाख मंगियो शाख मीरवा लुंडी शाख ए बेन शाखन में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार एहतजाज किया मीरपुर साकरो में लदियावा जाम ब्रांच ए गुंगी शाख में पानीकोट खिलाफ़ आबादगार मुजाहरों आबादगार एक्शन कमेटी के सद से पानीकोट खिलाफ़ लेट स्टॉप से एहतजाजी मुजाहरों किया शाखन में पानी छोड़कर जो मुतालबो सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पेटे अलिफ की सद से उस्तादन जा मुजाहरा मटियारी सेवण पीर जो गोठ कुंडरी टंडो मोहम्मद खान में प्राइमरी उस्तादन मुजाहरा कर धरना आया अगवानन जो चवण हो तो सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादन जो जायज हक है देर ए कोताही के कबूल न किया वो सर्विस स्ट्रक्चर की नोटिफिकेशन तदोजहद जारी रही है।

0: दाखिल भरसा नौजवान नारी से मुबिना ज्यादती की कोशिश केस दाखिल गिरफ्तारी नहीं सकी बायजी थाने के हद गोठ बहादुर ड्रखण में 16 वर की नारी से बिन नौजवान पारा मुबिना तौर जिनसी ज्यादती की कोशिश कई वही मुतासर नारी के वालिद नेक मोहम्मद सुमरो की फरियाद से बिन जवाबदार तनवीर सुमरो और तारिक सुमरो खिलाफ केस दाखिल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85-69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

चमे में तरफ़न लागापन इलाका सलामती ए विचो ओभर की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन ए इस्तेहकाम लाए सफारती हल कढ़ने ते भी जोर भर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए मोहसन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओभर में तकरार की पुरमुन हल वाल कोशिशों को हिस्सों है। अमेरिका के ईरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ईरान वट आलमी बहरी रस्तन की मुकम्मल तौर बंदिश की सलाहियत मौजूद ना है। मौशी नाकाबंदी तेहरान के तबाह कर छी। अमेरिकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेसेंट है असं आखिरी मरहले में दाखिल रहा आयो। दुश्मन खिलाफ सब का वही मुआशी कार्रवाई शुरू कर छी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जो एटमी प्रोग्राम दफन कर छ। अमेरिका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो इतराफ़ है। ईरान पास्तारान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा है अमेरिका के जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा तो मुआशी मैदान में शोर न करे हा। ईरानी फौज दुश्मन के पोते हटने से मजबूर कर जंग में तेहरान कामयाब थो है। वडे वजीर सैद मुराद अली शाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात सिंध के मामलों जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल। बिन्हीं अगवानों गडियल दिलचस्पी वाले मामलों मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी ख्याल की डेवट कई। रवादारी ए सियासी मुशावरत वो सिलसिलो जारी रखने से बेतफाक। राणा सनाउला मोहम्मद औरंगजेब अली परवेज मलिक शिजा फातिमा ए बिया भी मुलाकात में मौजूद हुआ। आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के नवन चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ खणी वरतो। आजाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर नवन चूंडियल मेंबर्स का हलफ खणायो। आजाद कश्मीर असेंबली के 8 मखसूस सीटों में भी नून लीग 6 सीटों से कामयाबी मारण बाद ऐवान में नून लीग की सीटों जो अंग वधी 31 थी वयो। पीपुल्स पार्टी 14 सीटों माने सकी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो। जस्टिस उमर सियाल कमीशन की सरबराही कंदो। जांच लाए महीने जो वक्त मुकरर। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब चयो है अदालती कमीशन से मीर रजा के वारसन के सहकार करनो पवंदो न तो ये सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहिन के सामू अचण घुर्जे। पुलिस ए जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के माइटन के मुतमिन करना है। मीर रजा कत्ल केस में अदालती कमीशन जोड़ने खिलाफ ए जीआईटी की क्याम लाए वारसन की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में बुधनी। जस्टिस अदनान करीम मेमण धुरन के नोटिस जारी कर छा। 31 अगस्त से जवाब तलब। दरख्वास्त में मीर रजा जो पोस्टमार्टम कदड़ डॉक्टर उसामा ए डॉक्टर समिया केस की जांच कदड़ टीम के मेंबर समेत 19 जन के धुर बनाया वो। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर चो तो पुलिस की जांच अजा तक कें हतमी नतीजे से ना पौती। अदालती कमीशन से केस की जांच से नाकारी असर पवंदा। कमीशन की इंक्वायरी के अदालत में चालान तौर पेश न तो कर सकते। गडियल जांच टीम कायम करना जरूरी है। सिंध में नवन सूबन के पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर से रद्द किया है। सिंध जो विरांगो कबूल ना है। सिंध जा मानू सिंध के पैं वतन समझन था। सिंध सदन का आबाद है आबाद रहंदी। सिंध के तालीम वाले वजीर सैयद सरदार शाह चो है तो उस्तादन के फेस फ्रेम ऐप के 6 जिलों में लागू किया वो है। कुछ मानून का फेस फ्रेम ऐप हजम नथी थे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद वी फेस ऐप सिर्फ उस्तादन ला ना है पर समूरे अमले लाया है।

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरठ जिले लतार खिलाफ़ एहतियाज कंदड़ उम्मीदवार शागिर्द की कैंप से कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पली जो अज आमद शागिर्द से यकजहती जो इजहार अयाज लतीफ़ पली जो तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक बादशाही इदारो बणजी वो है जिते मथा का हुकुम अचण वाले पास किया वे तो रुगो मरसू सिंध न ऐसू जहा नारा हणन से नौजवान के रोजगार और अख्तियार न मिलन ता अमली कदम खड़ जरूरी है अदलिया के भी नोटिस वन घुर्जे। मिठी में थरपारकर बार एसोसिएशन पारा सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ़ अदालती कार्रवाई जो बॉयकॉट रैली कड़ी धरणो हयो वो

फामीदा पिताफी अगवा केस की सिंध हाईकोर्ट सखर में बुधणी डीआईजी सखर एसएसपी सखर ए धुरन जा वकील पेश अदालत पारा फामीदा लिगारी जदम बाजियाबी से सख्त कावड़ जो इजहार डीआईजी सखर के छंड जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स दिना तवानी कारकर्दगी दिसी लगे तो इन डिवीजन के पुलिस की जरूरत ही ना है जैसे अवं अदालती हुकुमन से अमल ना कराए सो तो उदे इस्तीफा दियो ई सूरत में अदालत तवा के हटाने लाइ हुकुम जारी कर सके थी जैसे गुम थे औरत के बाजियाब ना कराए सो तो आईजी सिंध के अदालत में तलब कंदासी केस की बुधनी 7 सितंबर से मुलतवी।

0: सिंध के मुख्तलिफ शहर में आबादगार जो पानी खोट खिलाफ़ एहतजाज, वगन के मुख्तलिफ शाखन में पानी खोट खिलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, इंडस हाईवे से धरणो, खावड़ शाख, मंगो शाख, मीरवा, लुंडी शाख ए बेन शाखन में पानी खोट खिलाफ़ मुजाहरों के हो। मीरपुर साकरो में भी लध्यावा, जाम ब्रांच ए गूंगी शाख में पानी खोट खिलाफ़ आबादगार एहतजाज, आबादगार एक्शन कमेटी के सद से पानी खोट खिलाफ़ लेट स्टॉप से एहतजाजी मुजाहरों के हो, शाखन में पानी छोड़कर मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पेटे अलिफ के सद से उस्तादन जा मुजाहरा, मटियारी, सेवण, पीर जो गोठ, कुंडरी, टंडो, मोहम्मद खान में उस्तादन पारा मुजाहरा किया वा। अगवान सर्विस स्ट्रक्चर उस्तादन जो जायज हक है, देर ए कोताही के कबूल न किया वो। सखर भरसा नौजवान नारी से मुबैन ज्यादती की कोशिश केस दाखिल, गिरफ्तारी न थी सकी। बायजी थाने जैद गोठ बहादुर रखण में सोरन वरन की नारी से बिन नौजवान पारा मुबैना तौर जिन्सी ज्यादती की कोशिश कई हुई। मुतासर नारी के वालिद नेक मोहम्मद सुमरों की फरियाद से बिन जवाबदार तनवीर सुमरों ए तारिक सुमरों खिलाफ़ केस दाखिल किया वो। फरियादी मूजिब उनकी धीए पैं घर मासी के घर वही रही हुई तो जवाबदार पाड़े वाले घर में खेस गेले वी वाया। न्याणन की दाहन से पौतासी तो जवाबदार फरार थी वह।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 5414 456 तौकीर अहमद 0306

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: अपनियाजा तमाम जेनियन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत मौजूद। इरशाद ऑटो से फैंसी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जहाँ में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

जगह जा पावा ऐं पाइप डेढ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5451-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीज जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निचो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण, उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो। राबते लए 0301-2196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ओलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जो इफ्तिताह करे छो तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाए हारन की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़न ते जैतून जो फसल पोखियो पियो वञे। जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचाए सकजे थो। हुकूमत हारन की मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तहरान में ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनी साह मुलाकात, घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। आईएसपीआर मौज मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच बेतरफन लागापन इलाकई सलामती विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डेवट कई हुई। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमून इस्तेहकाम सफारती हल कढ़ जोर भर फील्ड।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि निजकारी बाबति काबीना कमेटीअ जो इजलास निजकारी जे पहिरें मरहले में शामिल डिस्कोस फेस्को गेपको ऐं आइस्को जे रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जी मंज़ूरी ॾिनी वई। चूंडियल असासा ऐं रहियल पेंशन नई हुकूमत कंपनी SPV ॾांहुं मुंतकिल थींदी। मौजूदु मुलाज़मनि जूं बकायाऊं डिस्पोज जी ज़िमे हूंदियूं। पतनामे में चयो वियो आहे त बिजली जूं क़ीमतूं नेपरा ई तय कंदी, मुलाज़मनि जे हक़नि जो बि तहफ़ुज़ कयो वेंदो।

0: ऐं सिस्टम नाकाम न आहे थियो, डिलीवर करे रहियो आहे। सिस्टम बाबति बहितर फ़ैसिलो अवामी करे सघे थो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक़ चयो आहे त हालतूं पहिरीं घणी ख़राबु हुयूं, हाणे बहितर थी चुकियूं आहिनि। मुआशी सूरत हाल में बहितरी वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जी कोशिशुनि जो नतीजो आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त अथव।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: 6969।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਲੇ ਸੱਜੜਾ ਸਾਥੀ ਸੱਡ ਨੀ ਵਿਲਹੀਅ ਜੇ ਵਥਾਣ ਤੇ ਤੋਦ ਨ

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निचो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीरजी तेहरान में ईरानी घरू वजीर इस्कंदर मोमनी से अहम मुलाकात। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात दौरान मौजूद। आईएसपीआर मौजे मुलाकात दौरान पाकिस्तान ईरान विच में बेतरफन लागापन इलाकाई सलामती विच ओभर की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही। पाकिस्तानी क्यादत खिते की अमुन इस्तेहकाम लाए सफारती हल कढ़ण से भी जोर भर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ए मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरों विच ओभर में तकरार की पुरअमुन हल वार कोशिशों को हिस्सों है। ईरान मुकम्मल तौर से तबाह थी वो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट से बयान। अमरीकी नाणे वाले वजीर स्कॉट बेडसेट चया है तो तेहरान खिलाफ डी डे की शुरुआत थी वही। ईरान के व्यापार में सहूलत दींदड़ मुल्क इदारन के भी सजा दिनी वेंदी। पासदारान इनकलाब चया है तो अमरीका की मुआशी हमले जो ऐलान फौजी महाज से नाकामी जो एतराफ है। ईरानी आर्मी चीफ चया वीह साल जंग विड़नी पी तो विड़ंदी मुल्क की दिफा तोते न हटंदी। विच ओभर में बहरान के पार फलस्तीन जो मसलो है। फलस्तीन इसराइल विच में गालन की बहाली आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो क्याम जरूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग के उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से मुलाकात दौरान गालबोल दौरान इजहार। चीनी परदेही वजीर वांग यी है तो विच ओभर की सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल थी वही है। अमन अमान की बहाली लाए गालन तरफ वापसी अंटर है। चीनी परदेही वजीर कोयती परदेही वजीर की मुलाकात दौरान सहकार वधाने ते बेतफाक। वजीर आजम पाकिस्तान ओवलियो वैल्यू चेन पॉलिसी जारी करे छड़ी। तकरीब के खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो मुल्क में ज़रई इनकलाब लाए हारन की भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़न ते जैतून जो फसल पोखियो पियो वञे। जैतून के फसल के हथी डेई परदेही नाणो बचाए सकजे तो। हुकूमत हारन की मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सिंध के मामलन ए जारी तरक्याती मनसूबन से तफसीली गाल बोल, सियासी सूरत हाल से भी ख्याल की डे वठ, रवादारी ए सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो जारी रखने से भी इतफाक, राणा सनाउल्ला मोहम्मद औरंगजेब आज़म नज़ीर तारण ए बया भी मुलाकात में मौजूद हुआ। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमायतन जो गडियल इजलास, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गोहर समेत समूरन मुखालिफ धुर जमायतन जा पार्लियामानी अगवान ए मेंबर शरीक, जमहूरियत की बहाली लाए पार्लियामेंट के अंदर ए बाहर गडियल तौर जदोजहद करने ते भी गौर विचार, अहम फैसलन जो इम्कान। सिस्टम नाकाम नाहे थियो, डिलीवर करे रहो आहे सिस्टम बाबत बेहतर फैसलो अवामी करे सके थो। कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार आया सादिक चयो आहे त हालतूं पहिरीं घणियूं खराब हुयूं, हाणे बेहतर थी चुकियूं आहिनि। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जे कोशिशुनि जो नतीजो आहे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान जी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी करे छॾी, ख़ुदि मुख़्तियार क्रेडिट रेटिंग CAA1 मां वधाए B3 कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रेडिट रेटिंग में बहितरीअ जी आजियां कंदे चयो आहे त हुकूमती मुआशी टीम जे कोशिशुनि जो नतीजो आहे। आज़ाद कश्मीर जे कानून साज असेंबलीअ जे नवनि चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ़ खणी वरितो, आज़ाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर नवनि चूंडियल मेंबर्स खां हलफ़ खणायो। आज़ाद कश्मीर असेंबली जे 8 मखसूस सीटनि मां बि नून लीग 6 सीटनि ते कामयाबी माणण बाद ऐवान में नून लीग जी सीटनि जो अंगु वधी 31 थी वियो, पीपुल्स पार्टी 14 सीटूं माणे सघी। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रज़ा केस जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छॾियो, जस्टिस उमर सियाल कमीशन जी सरबराही कंदो, जांच लाइ महीने जो वक्त मुकरर। कराची जे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त अदालती कमीशन ते मीर रज़ा जे वारसनि खे सहकार करणो पवंदो, न त हीअ सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहिनि खे साम्हूं अचणु घुरिजे, पुलिस ऐं जांच इदारा कमीशन जी मदद कंदा। हुकूमत जी तरजीह मीर रज़ा जे माइटनि खे मुतमिन करणु आहे। मीर रज़ा कतल केस में अदालती कमीशन जोड़ण खिलाफ़ ऐं GIT जी क़याम लाइ वारसनि जी दरख़्वास्त ते सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी, जस्टिस अदनान करीम मेमण धुरन खे नोटिस जारी करे छॾिया, 31 अगस्त ते जवाब तलब। दरख़्वास्त में मीर रज़ा जो पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा ऐं डॉक्टर समिया केस जी जांच कंदड़ टीम जे मेंबर समेत 19 ॼणनि खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जिब्रान नासिर चयो त पुलिस जी जांच अञा ताईं कंहिं हतमी नतीजे ते नाहे पहुती, अदालती कमीशन सां केस जी जांच ते नाकारी असर पवंदा, कमीशन जी इंक्वायरीअ खे अदालत में चालान तौर पेश नथो करे सघिजे, गॾियल जांच टीम क़ाइमु करणु ज़रूरी आहे। सिंध हाई कोर्ट बार जी मेज़बानी हेठि आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटीअ जो अहम इजलास, सिंध जो विरांगो रद्द, इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ मज़ाहमत जो बि ऐलान। आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटी के चेयरमैन अली अहमद कुर्द चयो आहे त सूरे बादशाह जी धरतीअ ते वार थियो त वकील मज़ाहमत कंदा, सिंध सिर्फ़ ज़मीन जो टुकड़ो न पर माउ आहे, सिंधू दरिया सिंध जी वहदत जी निशानी आहे ऐं सिंध जी वहदत खे नुक़सान पहुचाइण न ॾिनो वेंदो। इजलास में मुल्क जे चइनि हाई कोर्ट्स जा वकील ऐं अॻवान शरीक थिया। सिंध में नवनि सूबनि खे पीपुल्स पार्टी खुलियल तौर ते रद्द कयो आहे, सिंध जो विरांगो क़बूल नाहे, सिंध जा माण्हू सिंध खे पंहिंजो वतन सम्झनि था, सिंध सदियुनि खां आबाद आहे ऐं आबाद रहंदी। सिंध जे तालीम वारे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह चयो आहे त उस्तादनि जे फेस फ्रेम ऐप खे 6 ज़िलनि में लागू कयो वियो आहे, कुझु माण्हुनि खां फेस फ्रेम ऐप हज़म न पई थिए, जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद वठंदासीं, फेस ऐप सिर्फ़ उस्तादनि लाइ नाहे पर समूरे अमले लाइ आहे। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी लताड़ खिलाफ़ एहतजाज कंदड़ उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जी कैंप ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजो जी आमद, शागिर्दनि सां यकजहतीअ जो इज़हार। अयाज़ लतीफ़

0: जो चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हिकु बादशाही इदारो बणिजी वियो आहे जिते मथां खां हुकुम अचण वारनि खे पास कयो वञे थो। रुगो मरसूं सिंध न ॾिसूं जा नारा हणण सां नौजवाननि खे रोज़गार ऐं अख़्तियार न मिलंदा। अमली क़दम खणण ज़रूरी आहिनि। अदलिया खे बि नोटिस वठणु घुरिजे। फहमीदा पिताफ़ी अगवा केस जी सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿुधणी। DIG सखर, SSP सखर ऐं धुरन जा वकील पेश। अदालत पारां फहमीदा लिगारी जी अदम बाज़ियाबीअ ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। DIG सखर खे बि छंड। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना रिमार्क्स ॾिना। तव्हांजी कारकर्दगी ॾिसी लॻे थो त हिन डिवीज़न खे पुलिस जी ज़रूरत ई नाहे। जेकॾहिं अवां अदालत हुकुम ते अमल नथा कराए सघो त उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियो। ॿी सूरत में अदालत तव्हांखे हटाइण लाइ हुकुम जारी करे सघे थी। जेकॾहिं गुम थियल औरत खे बाज़ियाब नथा कराए सघो त IG सिंध खे अदालत में तलब कंदासीं। केस जी ॿुधणी 7 सेप्टेम्बर ते मुल्तवी। कराचीअ में सचल थाणे जे हद मां वापारीअ खां 1,20,00,000 रुपया फुर। हथियार बंदि बैंक मां रक़म कढाए ॿाहिरि निकिरंदड़ वापारीअ खे जर्गमाल बणायो। 1,20,00,000 रुपया फुर करे आसानी सां फरार। इतलाह मिलण ते पुलिस पहुची। शक जे बुनियाद ते बैंक जे चयनि सिक्योरिटी गार्ड्स खे हिरासत में वठी छॾियो। पुछा गाछा जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी। होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-35-92-120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
7: 1519-15-65-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं मोहसिन नकवी जो ईरानी दौरो विच ओभर में तकरार जी पुरअमन हल वारनि कोशिशनि जो हिसो आहे। ईरान मुकमल तौर ते तबाह थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो समाजी वेबसाइट ते बयान। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेंसन चयो आहे त तहरान ख़िलाफ़ डी डे जी शुरूआति थी वई आहे। ईरान खे वापार में सहूलत ॾींदड़ मुल्क ऐं इदारनि खे बि सज़ा ॾिनी वेंदी। पासदारान इनकलाब चयो त अमरीका जी मुआशी हमले जो फ़ौजी महाज़ ते नाकामी जो इतराफ़ु आहे। ईरानी आर्मी चीफ चयो त 20 सालनि ताईं जंग विड़णी पई त विढ़ंदासीं, मुल्क जे दिफ़ा तां पोइ ते न हटंदासीं। विच ओभर में बोहरान जे पाड़ फलस्तीन जो मसलो आहे। फलस्तीनी ऐं इसराइल विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली ऐं आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो क़याम ज़रूरी आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जे उर्दन जे बादशाह शाह अब्दुल्ला सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी परॾेही वज़ीर चयो त विच ओभर जी चीन सूरतहाल नाज़ुक मरहले में दाख़िल थी वई आहे। अमुन जी बहालीअ लाइ ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसि अंटर आहे। चीनी परॾेही वज़ीर ऐं कोइती परॾेही वज़ीर जी मुलाक़ात दौरान सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओलियो वेलियो चेन पॉलिसी जारी करे छॾी। तकरीब खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो त मुल्क में ज़रई इनकलाब लाइ हारनि जी भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़नि ते ज़ैतून जो फ़सुल पोखियो पियो वञे। ज़ैतून जे फ़सल खे हथी ॾेई परॾेही नाणो बचाए सघिजे थो। हुकूमत हारनि जे मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी सदारत हेठि निजकारी बाबति काबीना कमेटीअ जो इजलास। निजकारी जे पहिरें मरहले में शामिल डिस्कोस, फेस्को, गेपको ऐं आइस्को जी रीस्ट्रकिंग प्लान जी मंज़ूरी ॾिनी वई। चूंडियल असासा ऐं रयल पेंशन नई हुकूमती कंपनी SPV ॾांहुं मुंतकिल थींदी। मौजूदु मुलाज़मनि जूं बकायूं डिस्कोस जी ज़िमे

आज़ाद कश्मीर जी कानून साज असेंबली के नवन चूंडल 46 मेंबर्स हलफ खणी वरतो। आज़ाद कश्मीर असेंबली के स्पीकर नवन चूंडल मेंबर्स का हलफ खणायो। आज़ाद कश्मीर असेंबली के 8 मखसूस सीटन मां बे नून लीग 6 सीटन ते कामयाबी मारण बाद ऐवान में नून लीग जी सीटन जो अंग वधी 31 थी वयो। पीपल्स पार्टी 14 सीटू माणे सघी। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो। जस्टिस उमर सयाल कमीशन की सरबराही कंदो। जांच लाए महीने जो वक्त मुकरर। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब चयो तो अदालती कमीशन से मीर रजा के वारसन के साकार करणो पवंदो न तो यह सिलसिलो हलंदो रहंदो। जांच दौरान थियल कोताहियन के सामू अचण घुर्जे। पुलिस ए जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के माइटन के मुतमिन करना है। मीर रजा कतल केस में अदालती कमीशन जोड़ने खिलाफ ए जीआईटी जी क्याम लाए वारसन की दरख्वास्त सिंध हाईकोर्ट में बुधनी। जस्टिस अदनान करीम मेमन धुरन के नोटिस जारी कर छाया। 31 अगस्त से जवाब तलब। दरख्वास्त में मीर रजा जो पोस्टमार्टम कदड़ डॉक्टर उसामा ए डॉक्टर सुमैया केस की जांच कदड़ टीम के मेंबर समेत 19 जन के धुर बनाया वो। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर चयो तो पुलिस की जांच अजा तई कें हतमी नतीजे से ना पौती। अदालती कमीशन से केस की जांच से नाकारी असर पौधा। सिंध हाईकोर्ट बार की मेजबानी हेठ आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटी जो इजलास। सिंध जो विरांगो रद्द। इम्कानी विरांगे खिलाफ मज़ामत जो ऐलान। आल पाकिस्तान वकील एक्शन कमेटी के चेयरमैन अली अहमद कुर्द चयो तो सूरे बादशाह की धरती से वार थियो तो वकील मज़ामत कंदा। सिंध सिर्फ जमीन जो टुकड़ो न पर माव है। सिंधु दरिया सिंध की वहदत की निशानी है। सिंध की वहदत के नुकसान पहुंचाण न डनो वो। इजलास में मुल्क के चैनी हाईकोर्ट्स जहा वकील अगवान शरीक थिया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।